0: Movie Mood. Movie Mood. Movie Mood.
1: बजरंगी बाईजान।
0: को पामी गासलो आज़ो एम में खास कम की फिल्म गा।
1: देम मी स्टोरी

0: बेंजी
1: क्या है? मेरा नाम बेंजी नहीं, रसिका है।
2: और भी तो लोग रहे होंगे भाकुर क्षेत्र में, वो क्यों नहीं ले गए इसे अपने घर?
1: मुरादाबाद,
3: झुमरी तलैया,
1: आसनसोल, पाकिस्तान।
2: इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो तुरंत।
4: चलिए हटे, आप बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता।
5: अरे कैसे नहीं हो सकता कुछ, हम कह रहे हैं पाकिस्तानी, घर भेजिए इसे।
6: सिक्योरिटी, हम पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनाते, लोग यहाँ अमेरिका का पासपोर्ट बनवाने, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान का।
7: अरे अगर मुन्नी पाकिस्तान की है तो जर्मनी जाके क्या करेगी?
8: सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा।
9: हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार, वो देखो।
10: जनाब बिल्कुल मेंटल है ये।
8: जय श्री राम। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है ना वीजा, लेकिन वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे।
11: ऐसे हैं भैया बजरंगी, ऐसे हैं भैया बजरंगी।
12: कितना पार बना फिर मैं बालाले भी चमिहार तीन वारा का फहारो।
13: देखो मैं फारो किस बालारो का हम ऐशा हो गई कमाई की का तबे दे नहीं निकला वाह गए कोमे को ते से फार बे दी मेंगी फताऊं ना ने ये मकी ने वाणी मी हैं देवम बालारो के सम ए हाँ इंटरेस्ट हुरे था
12: हुरे हमरो वे मिस रोवे हम
13: पूरी हाथ ने हमरो ए कुरी में समरो उन मंजर तो के देवन फार बाला
12: फेस रोवे रोवे
13: हाँ को पामी गे में खास मंजर के
12: एम में फाहु तंकोल एम में हास सही कुछ मम्मा कह रहे दुएला फदा तंकोल वारा ರೀತಿ ತಂಕೊಳೆಂಗೆ
13: ಅರೆ ಹಿತಾ ಕುಳಲಾ ಅಸರುಗದ ದೆನ್ ಕೂಡ ಕುಜ್ಜೆ ಅಸಲು ಉಳೆಂಜಾವೆ ಸಹಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಕಂಡೆಂಗೆ ವರಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತಾ ಕುಳಲಾಣ್ ಎ ಕಂತಂಗೆ ಹಮಗೆ ಅಮಿಸ್ದು ಅಸು ಬಜರಂಗಿ ಬೈಜಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಸ್ ಬೆಲ್ಲಿರು ಗದೆನ್ ತಿಬ್ಬಣ ಹಮ ಆದೇ ರೋವೆ ಕಾಲ್ ತಂದಂಕೊಳ್ ವರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಸಿಂಗೆ ಅಸು ಹೆಮ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಬಜರಂಗಿ ಬೈಜಾನ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕು
12: ಮೀಡಿಯಾ ಮಹು ಬೆಲುಂ ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಫಹರು ಟಿವಿನ್ ದೆಕ್ಕಿರುಗ ಹಾ
13: ಹಾ ಹಾ ಎಹೆ ವಿ ಮಹಂದಾ ಹುಣ್ಣಂತ ಮಿಜು ಮೀರಿ ಹಮ ವರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಜರ ತಕಾ ಎಚ್ಚಿ ಸುವಾಲ್ ತಯ್ಯಾರ ಕೊಲ್ಲಾ ಫೇಮಿ ಮಿ ಮಂಜರ ತಕ ಅಚ್ಚಿ ಇನ್ ಸುವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಫಿ ಯಾಮೋ ಅಜ್ವ ಕಿಹಾ ಫರ್ದಕ ಮಕಾಯ ಕೊ ಜವಾಬ್ ದೇವಿದಾಣಿ ಹೀವೆ
12: ದೆಂ ಬಲಾಲಾನಿ ದೋ ಅಳಿ ಸುವಾಲ್ ಫಶಮಾ
13: ಸುವಾಲ್ ಫಶಾಣಿ ಮೆ ಫ್ರತಂ ಫ್ಯೂಂಗ ಲವತ್ತ ಒತ್ತರೆ ಲಾಯಕ ಫಹೋ

0: चल बेटा सेल्फी ले ले रहे दो अलावा ओके वारा बराबर देंग इस वाल की कुड़ कुछ जाए मीट खा ही तो मुनुनी मा इमो रेस्टोरेंट टेक खा फाहुंगे इंदे दो ऐतनो गाने लावे की कोबा
1: कुलुकु की आलावे
0: आ वारा रंगल
2: मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी

0: नहीं सकती।
1: अच्छा एक काम करते हैं कि शहरों के नाम लेते हैं, और अगर तेरा घर वहाँ पर हुआ तो तू हाथ उठा लेना। मेरठ, फरीदाबाद, ग्वालियर, झांसी, पटियाला, अमृतसर, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर। हम हैं पवन कुमार चतुर्वेदी, पर प्रेम से सब बजरंगी बुलाते हैं। जय श्री राम। बहन जी,
2: बहन जी
3: क्या है? मेरा नाम बहन जी नहीं, रसिका है।
4: वो भी तो लोग रहे होंगे भाकरूप क्षेत्र में, वो क्यों नहीं ले गए इसे अपने घर?
3: मुरादाबाद,
1: झुमरी तलैया,
3: आसनसोल,
5: पाकिस्तान।
4: इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो तुरंत।
6: चलिए हटिए, आप बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता।
1: अरे कैसे नहीं हो सकता कुछ, हम कह रहे हैं पाकिस्तानी, घर भेजिए इसे।
7: सिक्योरिटी,
8: हम पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनाते, लोग यहाँ अमेरिका का पासपोर्ट बनवाने, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान का।
1: अरे अगर मुन्नी पाकिस्तान की है तो जर्मनी जाके क्या करेगी?
9: सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा।
10: हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार, वो देखो।
11: जनाब बिल्कुल मेंटल है ये।
1: जय श्री राम। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है ना वीजा, लेकिन वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे।
12: ऐसे है भैया बजरंगी, ऐसे है भैया बजरंगी।
13: मूवी मोड। मूवी मूड। मूवी मूड।
14: हिग्याम अड़तक एहा में हिग्याम म्यूजिक आएगो मोदी है के मैं कहा दिवे ही एफएम।
15: अब दफ़ फ़े हिलावा तक आए को माजी के तिरिया
16: हित तकुन जाग हो दी एम्मे गाया वा फन्नानुंगे हांदान तक आए को
15: हांदान तो गे तिरिया दातुर कोल्लमा

गाड़ी में हर मेवनी फर्स्ट कड़ी फंसेस मिनट हेंगा फकोरिया में दा शो ने मादा वाको तुम्हें जोन उम्मीद में कोरेन शो गए तेरे गेनस तो उन्दा वते हूं तेरे कम दे कम वारा ऊपर बाजर वाको तो कोड कहेंगे तो मम्मी गाड़ी वाके लान अस्सलाम वालेकुम।